0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोस, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 647-446-1616। उमरप्रीत चावला।

0: क्या बात है, चलते हैं कॉल दे वाले। जी सत श्री अकाल, 4677।
1: हाँ जी, की हाल है जी?
0: बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ।
1: बस ठीक ठाक। मैं कहा जी, सब तो ज्यादा बोलिया जाने वाला झूठ एक दिन दे विच तां जो कोई पुछदा है की हाल है, ओहदा जवाब जिहड़ा जी सब तो ज्यादा दिता जाने वाला झूठा जवाब है जी।
0: जवाब केड़ा हो?
1: बस ठीक है, ठीक पता कितने हुंदा जी।
0: भाई जी सही गल दसा, तुसी मेला लुट लिया गल कह के। पहली गल बंदा हुण मैं कहना हाँ जी भाई जी की हाल चाल है, बंदा जो मर्जी करदा होवे बंदा कहंदा हाँ जी ठीक है।
1: भावें दुनिया जिवें मर्जी चलदी होवे उहने गल मूंह ते रट्टी होई है, ठीक है जी,
0: ठीक है। हां बंदे आके रोंदा होवे ना, बंदे नूं कहो की गल हो गई, ठीक है, हाँ मैं ठीक हां। पछाण लै भाई, तुसी भी रग नूं पछाण लै। बहुत सही, इह वी जवाब सब तो सही है, पर अजे आपां होर वी एक्सपेक्ट करदे आं, तुसी मेला लुट लिया बस। थैंक यू वीरे, तुहाडा नाम?
1: प्रथम नाम है जी।
0: प्रथम, क्या बात है प्रथम वीरे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: ठीक ठाक,
0: थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।

क्या बात है, वेरी नाइस, बड़ा शानदार गीत ते म्यूजिक यार बड़ा वधिया। ट्रू स्कूल दा ए म्यूजिक है, देसी टच दे विच सुन के बंदे दा मलो मली दिल करता है भी यार, मोढे हिल ही जांदे आ बंदे दे, ते मोढे हिलाने भी चाहिए आ, नाले कसरत हो जाती, नाले बंदे दा मन खुश हो जाता। प्रोग्राम सरव रेडियो तुहाडे होस्ट सरवजीत सिंह दे नाल। बड़ा ही शानदार इंटरेस्टिंग सवाल तुहानू आपां पुछ रहे हैं, तुहानू की लगता है सब तो वध जिहड़ा इंसान, कोई भी इंसान सब तो वध झूठ बोलता है, झूठ जिहड़ा बोलन दे विच कॉमन है, सब तो वध बोलन जाण वाला झूठ किहड़ा है? ते 905-673-3337 गल बड़ी शानदार की उन्होंने, कहिंदे भी सब तो ज़्यादा बंदा यही कहिंदा, हाँ जी की हाल चाल है, ठीक है, हुण ठीक है किन्ने परसेंट ठीक है ये नहीं पता, परसेंट एक ठीक है कि परसेंट 100 ठीक है, बट ठीक है। पर होर की जवाब हो सकता है, तुसी सुनते हो आम ही, ये आपां रियल गल कर रहे हैं, रियल अपनी लाइफ दे विच, कोई इदां बई अपने वल्लों मारन वाली गल नहीं, रियल दे विच, रियलिटी दे विच। 905-673-3337 ते कॉल करके जरूर शेयर करो। ते जो इंसान कई बार गुस्से होवे ना, दूजा बंदा गल करे तो बंदा आगे वो आपे कही जांदा, नहीं मैं गुस्से नहीं हाँ, ना ना मैनू गुस्सा नहीं है, वो बंदा होंदा अंदरों गुस्से जी है बंद, पर कंट्रोल करके उन्हें कहता है, नहीं नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं हाँ। तो आ चीज़ भी बड़ी एक आम हो जाती है कि नहीं। 905-673-3337

0: सूर्य कवच
1: अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आ देवता गृणीये सूर्यगुं शक्तिः आदित्यं कीलकम् मम आदित्य प्रसाद सिद्ध्यर्थम्।

0: है आप सभी का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद, और सभी भाई सभी बहनों को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पहली बारी मदर्स बनी है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो मदर्स डे की। तो अब अगर आप अपनी मदर के लिए बढ़िया सा टीवी लेके आना चाहते हो, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, या फिर आउटडोर फर्नीचर, या फिर आपने किसी किस्म का भी आपको बारबेक्यू चाहिए, लेटेस्ट गैजेट्स किचन के लिए चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोवाल्स में। तो और जानकारी के लिए आप उनके वेबसाइट पे जाइए मदर्स डे स्पेशल देखने के लिए, topchoiceelectronics.com। और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टीम आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं मदर्स डे की। और मदर्स डे ऐसा है कि अगर आपके बच्चे आपकी सम्मान करते हैं तो वो ही सबसे बड़ा जिंदगी का गिफ्ट है। आपके बच्चे जिंदगी में आगे निकल गए हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए मदर्स डे का सबसे रोज, हर रोज मदर्स डे है ऐसे हालात में, और हर रोज मदर्स को भी प्राउड है, बच्चों को भी प्राउड है कि चलो अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मदर्स डे के लिए आप ज्यादा, आपके लिए ये है कि आप उनके साथ टाइम बताएं। अगर एल्डरली हैं तो उनका आजकल क्या होता है कि ओल्ड एज में जो कैंस नहीं खुलते हैं, कई काम जो उनसे नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए आप उनसे सलाह बना लें, प्लान बना लें अपनी माँ से कि किस एक हफ्ते में, महीने में एक बार आप उसके लिए जरूर अपनी माँ के पास जाएं। और उनको अगर मुश्किल होती है इसी तरह के कई तरह के काम करने की, तो उसमें आप उनकी हाथ बटाएं, मदद करें। वैसे तो अगर बच्चे लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, अपनी माँ की केयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं बाहर के लोग, लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं तो उसका जो इंसान को बच्चे आके करते हैं तो उसका जो उनका जो खून है वो बढ़ जाता है कि भी हाँ मेरा बच्चा आया, उसने मेरे पास टाइम बताया। इसी बहाने से आप अपनी माँ के साथ टाइम भी बता लेंगे, और टाइम ही सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है जिंदगी में, और वही सबसे बड़ी गिफ्ट है मैं सोचती हूँ। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मटेरियल चीज होती है किसी ना किसी कोने में पड़े रहेंगे, तो फिर भी चलो जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, है ना, अपनी आपके दिल खुश जिससे हो। तो क्या होता है कि माँ की गोद जो होती है उसका भी एक अलग आराम जो मिलता है, जो शांति मिलती है। तो अगर आपकी माँ है तो आप जरूर कभी ना कभी उसकी गोद में जरूर बैठिएगा, क्योंकि उसका जो आपको शांति मिलेगी तो वो अलग ही चीज दुनिया से, दुनिया के कोई भी झूला आपको वो जो सुख है, शांति है, वो नहीं दे सकता। तो आइए आपको इसी विचार के साथ एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसी तरह हम आपका जो मनोरंजन है करते रहेंगे। तो आज जो सभी रेडियो स्टेशन पे आएगा गाना जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, तो
1: तुमने मान ली थी तो मैंने क्यों मानी, तुम तो कौशल्या थी, मैंने अपनी दुख में थी बना दी,

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अब अपनी माँ के लिए आप सोने के गहने, सोने की बार, या फिर आप छोटे छोटे कोई आप डायमंड के सेट खरीदना चाहते हो, अप टू 70% ऑफ आपको मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे एल मदीना ज्वेलर्स पे, मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। अल मदीना ज्वेलर्स की पूरी टीम आपको इस मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, तो आप उनकी मदर्स डे स्पेशल का फायदा उठाइए। और जानकारी, शादी के लिए, एनिवर्सरी के लिए आपको डिजिटल गहने चाहिए, ब्राइडल सेट चाहिए लेटेस्ट डिजाइन के, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। और जानकारी के लिए आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए। 905-673-0100 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको किसी किस्म का भी, आपने बढ़िया सा आपने घर खरीदना है, होटल मोटल खरीदना है, किचन और वाटरलूप गोल्फ में, तो आप रिसेप्शनिस्ट को कॉल कीजिए 519-540-1260, 519-546-1260। आपने किसी किस्म का भी बढ़िया सा आपने ट्रक की रिपेयर करवानी है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपकी सर्विस देते हैं वो, तो ये है आपके लिए बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर। 1715 सिस्मल रोड मिसिसागर के मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-624-0055 पर कॉल कीजिए। 905-625-0055 पर कॉल कीजिए। अगर आपने बढ़िया खाना लाइव कुकिंग करवानी है किसी भी इवेंट के लिए, अभी पिकनिक्स बहुत सारी होंगी बहुत सारी कंपनीज की, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मिसिसागा में मौजूद है, तो लाइव कुकिंग के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703, 905-814-1730। वहां पे भी मदर्स डे के लिए अपनी मदर को ले जा सकते हैं, न्यूली रेनोवेटेड है, तो यह है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो अब अगर आपने घर खरीद लिया, मूविंग तो करना होता है, बहुत सारी मूविंग होती है समर टाइम में, तो आप एचके मूवर्स का नाम याद रखिए, कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव होने में, बहुत बढ़िया आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए 416-524-1804, अभी कॉल करके अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-6704 एचके मूवर्स। तो अब आपके लिए एक और बढ़िया सा पंजाबी का गीत मैं सुनाती हूँ आपको, ये बड़ा कॉमन है पर बहुत ही बढ़िया आपके लिए, ये जो गीत है आपके लिए बहुत ही कुलदीप मानक जी का गाया हुआ ये गीत है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: जी हाँ, तो एकदम उन्होंने फॉरएवर सॉन्ग, ये ग्रीन फॉरएवर जैसे ग्रीन सॉन्ग उन्होंने गा दिया, और सदियों तक लोग वो तो नहीं रहे दुनिया में कुलदीप मानक जी, लेकिन उनका जो ये गाना है ये जब तक दुनिया रहेगी लोग इसको सुनते रहेंगे और सराहते रहेंगे, और हम किस्मत वाले हैं कि जो कि हमने उनको देखा है और उनको लाइव देखा है, गाते हुए देखा है। तो आइए इसी विचार को लेके प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं, लेकर के बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-704। वो कनाडा भर में मूव करने में आपकी पूरी मदद करते हैं, ये हैं आपके लिए HK मूवर्स। और अभी तक आपने अपना टैक्स नहीं भरा है।
1: उनकी स्पेशल देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-3730 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
2: सिरनी शक्कर पारे मक्खी बेसन पिस्ता बर्फी मंदिर।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 हर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असीं लैके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपको और भी बढ़िया बढ़िया से गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपने अपना टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8135। पर्सनल हो या बिजनेस, आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कर सकते हो अपने टैक्स भरने के लिए। तो अब अगर आपने टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप खुशवंत सिंह व्यास को कॉल कीजिए 416-670-1313-416-677-1313 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेनी है, मदर्स डे के लिए टीवी लेना है, गिफ्ट देना है, या फिर आपको किचन की गैजेट्स गिफ्ट देनी है लेटेस्ट एडवांस्ड वंस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको आपके लिए एयरपोर्ट पे मौजूद है और दूसरी उनकी लोकेशन ब्रैम्पटन में, आपके लिए दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए और अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0042। आपको आउटडोर अभी बारबेक्यू चाहिए, बढ़िया से बारबेक्यूज आजकल बहुत टेक्नोलॉजी वाले डिजिटल वाले आगे हैं, तो आप ऐसे एडवांस वाले लेना चाहते हो ऐसी चीज़ें तो आउटडोर फर्नीचर भी है, आपको बहुत एडवांस बढ़िया मिलेगा। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, मदर्स डे फादर्स डे किसी भी मौके के लिए आपको खरीदने हैं गिफ्ट्स तो इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ब्रैम्पटन में 9057990045 और 905-799-0045 जहाँ आप topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स का बारे में जान सकते हो और उसका फायदा भी उठा सकते हो। तो आइए आपको ये एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं।

जी हाँ, तो क्या कमाल के गाने हैं। जो पुराने गाने थे उनका जो फील था वो एक अलग ही चीज है, जब सुनते हो तो बहुत ही मन को भा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर के, और एक और बढ़िया सा गीत आपको सुनाते हैं। अब लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये भी इस

0: अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त की तरफ है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिएगा। बहुत ही इमोशनल है लेकिन सच कह रहे हैं। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सुवादा पला।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: CA पे जाइए, आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 तक दिल्ली पर कॉल कीजिए 9054567333 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: Taste of Rotten Top Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.

शरणागतम् वं हृं हृं कामये देवी बलिहोम प्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम्।

0: कवचं वद नारायण उवाच शृणु प्रवक्ष्यामि हे वत्स कवचं च सुदुर्लभं श्रीकृष्णनैव कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ब्रह्मणा कथितं पूर्वं धर्माय जानवी तदे धर्मेण दत्तं मह्यं च कृपया पुष्करे पुरा त्रिपुरारिश्च यत् कृत्वा जगान त्रिपुरं पुरा ममोच ब्रह्मा यत् कृत्वा मधुकैटवयोर्मया सञ्जहारत्तबीजं यत्त्रित्वा पत्रकारिका यत्त्रित्वा हिमेन्द्रश्च शम्प्राप कमलादया यत्त्रित्वा च महायोद्धा
1: अमेरिका का सबसे बड़ा मज्जा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर।
2: यहाँ से आपको धागा चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400।
0: शत्रु भयंकर यत्रित्वा शिवतुल्यश्च दुर्वासा जानिनां वर ओम दुर्गे चतुर्थ

ओम अथ श्री विचित्र वीर हनुमान माला मंत्र श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री विचित्र वीर हनुमान माला मंत्रस्य श्री रामचंद्र भगवान ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे मारा मंत्र जपे विनियोगः अथ कर्ण्यासुः। ओम राम शाभ्याम नमः। ओम रीम गर्जनीभ्याम नमः। ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रीम अनामिकाभ्याम नमः। ओम रौं गणिचिकाभ्याम नमः। ओम रः करतर्कर्विष्टाभ्याम नमः अद अंगन्यासः। ओम राम हृदयाय नमः। ओम रीम शिरसे स्वाहा। ओम रौं शिखायै वशुट। ओम नैषाम। ओम रौं नेत्रत्रयाय वशुट। ओम रः अस्त्राय फट। अथ ध्यानम् वामेकरे वैरवहं महन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाध्यं दधानमाख्यामाद सुवर्णवर्णं भजीज्वरत्कुण्डलमाञ्जनेयम्। ओम नमो भगवते विचित्रवीर हनुमते प्रलयकालानल प्रभाज्वलत्कृतापवज्रदेहाय अञ्जनीगर्भसम्भूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय कथय व्याप्रमुखं बन्धय बन्धय सपमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भंजन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून् मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रों ह्रैं रों रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हन हन हूं फट् स्वाहा। एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन् माला।

0: है आप सभी का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद, और सभी भाई सभी बहनों को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पहली बारी मदर्स बनी है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो मदर्स डे की। तो अब अगर आप अपनी मदर के लिए बढ़िया सा टीवी लेके आना चाहते हो, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, या फिर आउटडोर फर्नीचर, या फिर आपने किसी किस्म का भी आपको बारबेक्यूज चाहिए, लेटेस्ट गैजेट्स किचन के लिए चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। तो और जानकारी के लिए आप उनके वेबसाइट पे जाइए मदर्स डे स्पेशल देखने के लिए, topchoiceelectronics.com, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टीम आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं मदर्स डे की। और मदर्स डे ऐसा है कि अगर आपके बच्चे आपकी सम्मान करते हैं तो वही सबसे बड़ा जिंदगी का गिफ्ट है। आपके बच्चे जिंदगी में आगे निकल गए हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए मदर्स डे का सबसे रोज, हर रोज मदर्स डे है ऐसे हालात में, और हर रोज मदर्स को भी प्राउड है, बच्चों को भी प्राउड है कि चलो अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मदर्स डे के लिए आप ज्यादा, आपके लिए ये है कि आप उनके साथ टाइम बताएं। अगर एल्डरली हैं तो उनको आजकल क्या होता है कि ओल्ड एज में जो कैंस नहीं खुलते हैं, कई काम जो उनसे नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए आप उनसे सलाह बना लें, प्लान बना लें अपनी माँ से कि किस एक हफ्ते में, महीने में एक बार आप उसके लिए जरूर अपनी माँ के पास जाएं, और उनको अगर मुश्किल होती है इसी तरह के कई तरह के काम करने की तो उसमें आप उनकी हाथ बटाएं, मदद करें। वैसे तो अगर बच्चे लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, अपनी माँ की केयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं बाहर के लोग, लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं तो उसका जो इंसान को बच्चे आके करते हैं तो उसका जो उनका जो खून है वो बढ़ जाता है कि भी हाँ मेरा बच्चा आया, उसने मेरे पास टाइम बताया, इसी बहाने से आप अपनी माँ के साथ टाइम भी बता लेंगे। और टाइम ही सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है जिंदगी में, और वही सबसे बड़ी गिफ्ट है मैं सोचती हूँ। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मटेरियल थिंग्स होती हैं किसी ना किसी कोने में पड़े रहेंगे, तो फिर भी चलो जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, है ना, अपनी आपके दिल खुश जिससे हो। तो क्या होता है कि माँ की गोद जो होती है उसका भी एक अलग आराम जो मिलता है, जो शांति मिलती है। तो अगर आपकी माँ है तो आप जरूर कभी ना कभी उसकी गोद में जरूर बैठिएगा, क्योंकि उसका जो आपको शांति मिलेगी तो वो अलग ही चीज दुनिया से, दुनिया के कोई भी झूला आपको वो जो सुख है, शांति है, वो नहीं दे सकता। तो आइए आपको इसी विचार के साथ एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसी तरह हम आपका जो मनोरंजन है करते रहेंगे। तो आज जो सभी रेडियो स्टेशन पे आएगा गाना जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, तो
1: मैंने अपने

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अब अपनी माँ के लिए आप सोने के गहने, सोने की बार, या फिर आप छोटे छोटे कोई आप डायमंड के सेट खरीदना चाहते हो, अप टू 70% ऑफ आपको मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे अल मदीना ज्वेलर्स पे, मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। अल मदीना ज्वेलर्स की पूरी टीम आपको इस मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, तो आप उनकी मदर्स डे स्पेशल का फायदा उठाइए। और जानकारी शादी के लिए, एनिवर्सरी के लिए आपको डिजिटल गहने चाहिए, ब्राइडल सेट चाहिए लेटेस्ट डिजाइन के, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। और जानकारी के लिए आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको किसी किस्म का भी आपने बढ़िया सा आपने घर खरीदना है, होटल मोटल खरीदना है, किचन और बाथरूम वॉल्क में, तो आप रिसीप्शनिस्ट को कॉल कीजिए 519-546-1260। आपने किसी किस्म का भी बढ़िया सा आपने ट्रक की रिपेयर करवानी है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपकी सर्विस देते हैं वो, तो ये है आपके लिए बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 1715 पे मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-624-0055 पर कॉल कीजिए, 905-625-0055 पर कॉल कीजिए। अगर आपने बढ़िया खाना लाइव कुकिंग करवानी है किसी भी इवेंट के लिए, अभी पिकनिक्स बहुत सारी होंगी बहुत सारी कंपनीज की, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मिसिसागा में मौजूद है, तो लाइव कुकिंग के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703-905-814-1730। वहां पे भी मदर्स डे के लिए अपनी मदर को ले जा सकते हैं, न्यूली रेनोवेटेड है, तो यह है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो अब अगर आपने घर खरीद लिया, मूविंग तो करना होता है, बहुत सारी मूविंग होती है समर टाइम में, तो आप एचके मूवर्स का नाम याद रखिए, कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव होने में, बहुत बढ़िया आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए 416-524-404, अभी कॉल करके अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-6704 HK Movers। तो अब आपके लिए एक और बढ़िया सा पंजाबी का गीत मैं सुनाती हूँ आपको, ये बड़ा कॉमन है पर बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये जो गीत है आपके लिए बहुत ही कुलदीप माणक जी का गाया हुआ ये गीत है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: जी हाँ, तो एकदम उन्होंने फॉर एवर सॉन्ग, ये फॉर एवर जैसे ग्रीन सॉन्ग उन्होंने गा दिया, और सदियों तक लोग वो तो नहीं रहे दुनिया में कुलदीप माणिक जी, लेकिन उनका जो ये गाना है ये जब तक दुनिया रहेगी लोग इसको सुनते रहेंगे और सराहते रहेंगे, और हम किस्मत वाले हैं कि जो कि हमने उनको देखा है और उनको लाइव देखा है, गाते हुए देखा है। तो आइए इसी विचार को लेके प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं, लेकर के बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-704। वो कनाडा भर में मूव करने में आपकी पूरी मदद करते हैं, ये हैं आपके लिए HK मूवर्स। और अभी तक आपने अपना टैक्स नहीं भरा है,
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-3033 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
2: सिर में शक्कर पारे मक्खी बेसन पिस्ता बर्फी मंदिर।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड पर शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपको और भी बढ़िया बढ़िया से गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपने अपना टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8135। पर्सनल हो या बिजनेस, आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कर सकते हो अपने टैक्स भरने के लिए। तो अब अगर आपने टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप खुशवंत सिंह दास को कॉल कीजिए 416-670-1313-416-677-1313 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेनी है, मदर्स डे के लिए टीवी लेना है, गिफ्ट देना है, या फिर आपको किचन की गैजेट्स गिफ्ट देनी है लेटेस्ट एडवांस्ड वंस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको आपके लिए एयरपोर्ट पे मौजूद है और दूसरा उनकी लोकेशन ब्रैम्पटन में, आपके लिए दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए और अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0042। आपको आउटडोर अभी बारबेक्यू चाहिए, बढ़िया से बारबेक्यूज आजकल बहुत टेक्नोलॉजी वाले डिजिटल वाले आगे हैं, तो आप ऐसे एडवांस वाले लेना चाहते हो ऐसी चीज़ें तो आउटडोर फर्नीचर भी है, आपको बहुत एडवांस बढ़िया मिलेगा। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, मदर्स डे फादर्स डे किसी भी मौके के लिए आपको खरीदने हैं गिफ्ट्स, तो इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ब्रैम्पटन में 9057990045 और 905-799-0045 जहाँ आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स का बारे में जान सकते हो और उसका फायदा भी उठा सकते हो। तो आइए आपको ये एक बढ़िया सा गिफ्ट सुनाते हैं।

करते ही सही उल्फत न सही नफरत ही सही इसको भी मोहब्बत कहते हैं। लाख छुपाए थे मगर हम दिल में समाए रहते हैं। शेर भी दिल में आज उठी है जाग सपा से चाहे न कर इकरार मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की रूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार मैंने तुझ

जी हाँ, तो क्या कमाल के गाने हैं। जो पुराने गाने थे उनका जो फील था वो एक अलग ही चीज है, जब सुनते हो तो बहुत ही मन को भा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर के, और एक और बढ़िया सा गीत आपको सुनाते हैं। अब लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये भी इस दिल से

अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिएगा। बहुत ही इमोशनल है, लेकिन सच कह रहे हैं। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पन इस वादा पला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लिखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटे जम की बाकी

0: This program is a proud member of the Canadian Punjabi Broadcasters Association, CPBA.
1: विजिटर टू कैनेडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कॉन्टैक्ट करो 647-400-6862

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection call to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100. कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लबदांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 6474006862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6474008-6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: लाल वेलोरियां, दया लाल वेलोरियां, तेनू करम वाले अलोरियां। कुकू राणा रोंदा हाय मैं मर गई रोंदा, कुकू राणा रोंदा रोंदा हाय मैं मर गई रोंदा। ओ लो लो लो लो लो लो लो वे ना रो दान्या वे मां दिया मालख जान्या वे मां दी ओदी गोदी वे प्यो दी फड़े बोदी वे बई मेरा। कुकू राणा रोंदा हाय मैं मर गई रोंदा, कुकू राणा रोंदा रोंदा हाय मैं मर गई रोंदा। देखो जी ये भी लोरी है, तो मेरे ख्याल से स्रोतियों ने पूछ लेने भी जो उन्होंने भी सुनी हो लोरी तो वह भी सारा शेयर कर सकते हैं। तो मेरी पसंदीदा मतलब काफ़ी सुनी हुई है मैं शुरू तो। दूजी गल यह है कि क्वेश्चन जो सा उत्थे खड़ा जी कि तुम अपनी मम्मी जी की मम्मी का नाम दसना तो कॉल करके दस सकते हो। नंबर जो सू कॉल करनी है 905-592-2169 साडा स्टूडियो नंबर है, 905-592-2169 साडा स्टूडियो नंबर है, 905-592-2169 905-592-2169 साडा स्टूडियो नंबर है। सानू तुसी कॉल कर सकते हो, इस प्रोग्राम दे विच शमूलियत कर सकते हो, मदरसे दे उत्ते कोई सुनेहा दे सकते हो, ते नाल दी नाल अपनी माता जी का नाम भी जिहड़ा साडे नाल सांझा कर सकते हो। सो सानू कॉल आ रही है जी, देखते हैं साडे स्रोते सानू की कहना चाहते ने। हैलो हैलो हैलो हां जी सत श्री अकाल वीर जी, तुसी आउणे रहो जी।
1: बस सर तुहानू बधाई दीआं मुबारकां प्रीत होणां नूं भी
2: जी
0: सारयां नूं जी बिल्कुल।
1: हां जी मैं अपनी मां नूं बीजी कहिंदा सीगा जी।
0: आओ अच्छा जी,
1: ते मेरी नानी दा नाम सी ईशत कौर शेरगिल जी।
0: वाह जी वाह, ते तुहाडे मम्मी दा की नाम सी बीजी दा?
1: मेरे वीर तेज कौर संधू सी जी।
0: आओ अच्छा जी, वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अज असि स्रोतियां नूं पुछ रहे हां कि नाले साडे नाल सांझ पाउण ते
1: आपां इक होर अनाउंसमेंट करनी आ।
0: हांजी हांजी जरूर,
1: सब नालों वधिया अपनी मां बारे कोई ना कोई वधिया शब्द बोलूगा।
0: हांजी,
1: जां कोई वधिया बोली सुनाऊगा उहनां नूं आपां फ्री रेडियो दवांगे जी, गुरबाणी रेडियो। हांजी
0: वाह जी वाह, बहुत स्वाद वाली गल कीती है जी, सानूं हमेशा माण है तुहाडे ते। बिलकुल बिलकुल जी, हाँ जी स्रोते लै, हाँ स्रोते लैके गए ने पक्का
1: तुहाडे तों।
0: हाँ जी मैं ठीक है, जरूर याद करा दें मेरे गल जे सुनते हुए था, क्योंकि मैं उन्होंने नंबर तुम फॉरवर्ड भी करते सी, पर आई डोंट नो भी चक्कर क्यों नहीं गए थोड़े को। पर स्रोते हाँ जी साढ़े नाल संधु साहब जुड़े हुए ने, प्लीज अज भी अगर अपनी मतलब मदर्स डे उत्ते कोई वधिया जी बोली सुनाने हो, वधिया जिहा साडे नाल कुछ पंजाबी लोक गीत जिहड़ा है साझा करोंगे, तो गुरबाणी रेडियो जिहड़ा है संधु साहब वालों तुहानूं
1: गिफ्ट करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ जी मैं नंबर नोट कर लूंगा ना जी।
1: एंड ऑफ द शो जोड़ा साहब तुसी अनाउंस उन्हां दा नाम जो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी,
0: हाँ जी हुणे हुणे कर दांगे
1: जी। मेरे वालों सारियां जिन्नियां मेरे वालों जिन्नियां भी इस मुल्क दीआं नहीं सारी दुनिया दीआं मावां ने उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद है जी। परमात्मा उन्हां नूं चढ़दी कला रखे, जिन्हां दीआं मावां बेचारियां चलो इस जहान दे विच नहीं, ओह वी ओह याद करदे सारे जी।
0: जी बिल्कुल,
1: मदर इस जहान च नहीं गए हैगे, पर मैं स्टिल आई एम सो इमोशनल के
0: बिलकुल। स्रोतियो प्रोग्राम चल रहा कंगना कच दिया, मैं तुहाडा अपना हैप्पी जौड़ा, मेरे नाल मेरा साथ देने मैडम प्रीत जी, गलबात मदरसे ते चल रही है, ते तुहानू दस ही देवां कि साडे संधू साहब भी कह गए ने कि इन्हां वल्लों दो गुरबाणी रेडियो अज असीं कढांगे, ते जिन्हां ने भी वधिया कोई बोली जां मतलब इह आ मदरसे दे उत्ते कोई मां दे उत्ते संबोधन कोई भी टप्पा जां बोली सुनाई, ते उन्हां दे विच्चों असीं जिहड़े लकी दो जाणे ने उन्हां नूं जरूर असीं गुरबाणी रेडियो देवांगे। ते सानूं कॉल कर सकदे हो, नंबर जिहड़ा तुसीं जिथे कॉल करनी है स्टूडियो नंबर हैगा जी 905-592-2169 905-592-2169 साडे नाल साडे कॉलर जुड़े ने, इक देखदे आ की कहना चाहुंदे ने। हैलो हां जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी।
3: हां जी बेटे, मेरे मम्मी दा मेरा नाम जतिंदर कौर है।
0: हां जी
2: ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੀ
0: ਜੀ,
2: ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਸੀ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ,
2: ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਕੌਰ
0: ਸੀ।
2: ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ,
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
2: ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਏ ਠੰਡੜੀ ਛਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਮਾਂ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਖੋਲ ਜੋ ਤੁਕ ਕਾਉ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
2: ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ।
0: ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ 905-592-2169 ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਹੈ, 905-592-2169 ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੋਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
3: ਜੀ।
0: ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
3: ਹੈਲੋ
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
3: ਹਾਂਜੀ
4: ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ,
4: ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ
3: ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ।
3: ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
0: ਹਾਂਜੀ,
3: ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈਏ ਫਟੇ।

0: पिक्का जंक्शन लेके आए ने स्पेशल ऑफर्स फॉर फेस्टिव सीजन। खास फेस्टिव सीजन ले कैटरिंग स्टार्ट सिर्फ 9.99
1: जिस विच मिलन गया 8 आइटम्स ए लाइव कैटरिंग भी कर देने।
0: फंक्शन वड्डा होवे या छोटा कैटरिंग वाला ता सिरा ला देंगे।
1: एना कोल शानदार पार्टी हॉल भी है वो भी रीजनेबल फूड प्राइसेस ते।
0: इस फेस्टिवल सीजन बनाओ अपनिया खुशियां नु दुगना ते पहुंचो टिक्का जंक्शन।
1: कॉल 6474294040
0: जंक्शन खुशियां दा सेलिब्रेशन।
2: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना होवे।
3: बस इन्नी गल।

0: किंग साइज पूरा बेडरूम सैट
1: याद रखना, ये 7 पीस का बेडरूम सैट है ते किंग साइज है। किंग एंड क्वीन दियां फीलिंग्स तुहानू इस बैड ते मिलनगियां। ये भी 1500-1600 डालर तो घट नहीं सी, पर मदर्स डे स्पेशल ओनली 899 दे नाल किंग साइज मैट्रस फ्री 500-600 डॉलर का तो मैट्रस ही होंदा, 400 का भी लाओ यार, 899 च पूरा क्वीन साइज किंग साइज बेडरूम सैट मिल रहा, नाल किंग साइज मैट्रस फ्री मिल रहा। क्यों? बिल्कुल क्यों, समझ गए हो? मदर्स डे स्पेशल डिस्काउंट है, बार बार नहीं मिलना, आज लास्ट डे है, चक लो डील है। 6885 Tomcon Road 647-262-0000 ते कॉल कर लो, होल्ड करा लेना, बेशक शोरूम च जाके चेक करके कंपेयर करके फिर डिलीवरी स्केजुअल करना, पर होल्ड करन च ता कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ नाम ते नंबर ही देना है। किस नंबर ते पिक्चर मंगानी, पिक्चर भी मंगा सकते हो, 647-262-0000 647-262-0000।

0: listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
1: Punjabi Versa, radio and television present.
2: Bhajan and Ghazal Samrat, Anup Jalota Ji, aa rahe hain aapke shahar apne suron ka jadoo bikherne.
3: Embassy Grand Convention Center mein aapko milte hain 2 November ko. जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। ये एक गजल भजन इवनिंग है, लेकिन इसमें मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट का ट्रिब्यूट भी दे रहा हूँ, कुछ उनके गाने भी वहाँ पेश करूंगा।
2: गाने भी सारे सुनहरी और आवाज भी सुनहरी अनूप जलोटा जी की। फॉर टिकट्स गो टू इवेंट ब्राइट और कॉल सिंगर जी एट 647-448-1000,
4: 647-448-1000।
1: संडे नवंबर 2nd शाम को 5 बजे मिलते हैं एम्बेसी ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर 8800 द गोर रोड ब्रैम्पटन।
5: ओ अज तां कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदों ही बनू जदों नवे अप्लायंसेस आउणगे। मैं गया लाइन नी कगल, उसे वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती।
6: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2888।
7: ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ।
5: ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ, ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 905-450-2888-905-450-2888।
8: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करदा आ रहा है। केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाइयां, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वालेयां तो बचो ते जसपाल नागरा नू फोन करो।
9: A1 के चमगालिए।
1: ਕਾਰਾਂ, SUV, ਟਰੱਕ, ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ, ਕਾਰਪੇਟ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 416-475-6600। $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 416-475-6600। ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ ਲਿਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। 416-475-6600।
10: अस्थमा,
11: पुराना जुकाम,
10: छिक्का होना,
11: बलगम,
10: स्किन एलर्जी,
11: वीट एंड मिल्क एलर्जी,
10: सोरोइसिस,
11: कब्ज अते हेयर लॉस,
10: एसिडिटी वर्गिया बीमारियां दा सफल अते पक्का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयां नाल
11: बायोवे क्लिनिक। आज ही संपर्क करो 905-790-1500।
10: 905-790-1500। बायोवे क्लिनिक, तुहाडे शहर ब्रैम्पटन विच।
11: जो आए सो राजी जाए।
10: बायोवे क्लिनिक।
1: PNC and Company, one-stop financial service, accounting and tax, small business and personal loan, mortgage service, real estate investment service, POS system provider, government grants waste, one-stop financial service te aao. PNC and Company, 4 location to serve you, Brampton, Mississauga, London, Oakville, one-stop financial service. For more information, call Chaudhary Heather, 437-26 627743 437

रियली लव दिस सॉन्ग मैन, व्हाट अ सॉन्ग। मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है ना, और आई एम श्योर कि तुहानू सारयां नू पसंद जरूर आ रहा होना।